0: है लाइका गोल्ड.
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
0: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर.
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
0: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन.
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स.
0: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी.
1: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000.
0: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
0: In Dubai. CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our रेडियो.
2: ताजा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ.

0: ये है लाइका गोल्ड। भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
1: 0208574 8410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
3: Atif Aslam live in the UK.
4: Dil diya galla karange na.
2: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
3: Book your tickets now at AXS.
2: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
3: Exclusive radio partner Leica Radio.
5: ताज़ा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।

हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भवाइए। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहू मैं कह न कोई। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाइया चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाए। हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै वे परवाह। साचा साहेब साच।

मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो

कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेस एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान।

0: प्रेजेंट हमारे राम प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम बुक योर टिकट्स नाउ विजिट www.eventimapolo.co.uk एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर रेडियो भक्ति प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी
1: मत जाओ काना क्यों जा रहे हो
2: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं
0: देखिए कृष्णा राधा रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला
2: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा
0: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू
2: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी
3: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in-store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
4: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
0: Like a Gold लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे
5: गोल्ड ब्रेकफास्ट विद काजल टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स

0: जाना के हाँ हाँ हाँ और सुनो हाँ एक एक परी थी।
1: क्या?
0: एक परी थी, तोता परी। हंसी वो बड़ी थी, गगन देश था उसका।
1: क्या?
0: गगन देश था उसका, अजब भेष था उसका। चले रात आगे, सुनो सुनो बात आगे, सुनो सुनो सुनो तो, अरे अरे सुनो तो हाँ।

अब क्या करूं, अब क्या करूं? कोई है, कोई है, कोई है? अरे हाँ, जाग गई तुम, हैं? जाग गई। और सुनो, और सुनाता हूँ। हाँ।

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: Herald. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
6: London Entertainment di sab to vaddi raat aa rahi hai. Four Pillars Entertainments Limited presents ABPD Awards UK 2026. Live performances by Naveen Kundra, Manjeet Bobby, Nikki Sethi, te hor zabardast artists. 9th May, shaam 6 baje, The Center Banqueting Suite, South Hall. For tickets call Manjeet Bhamra at 7956-300-367. ABPD Awards UK 2026. Exclusive radio partner Laika Radio Network.
7: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद
8: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट मंचूरियन मसाला पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट
7: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
9: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
10: Laika Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Gold Breakfast with Kajol.
11: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers, इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit startours.co.uk.

0: this one is a winner.
1: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 020-8574-8410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 020-8574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs apply।
6: भक्ति, प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
7: अच्छा कान्हा, क्यों जा रहे हो?
8: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
6: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
8: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
6: कृष्णा अवतारम इन सिनेमाज नियर यू।
8: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
9: This May, get ready for the biggest wholesale event in Southall. Spring Madness is live at iTech Wholesale from 11th to 17th May. Massive deals, unbeatable discounts and top brands like Taj, Trophy Rice, Tilda, VT, Kohinoor, Ashivat and Emmet Tea. Plus, Amira Frozen, Royal Forest quality ice cream and fresh fruit and veg at crazy prices. Free food tasting on the 13th and 14th. Free membership, free parking. Open 24/7. iTech Spring Madness.
6: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.
10: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
6: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
11: Gold Breakfast with Kajal.

share something with you, and this does relate to other people listening in right now, other listeners listening in. So let me just clarify one thing. जो बात मैं करना जा रही हूँ वो सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, आपके साथ भी हुआ है, काफी लोगों के साथ होता है. लेकिन डिफरेंस ये है कि मैं वोकली शेयर करूंगी आपके साथ, एंड काफी लोग मन से छुपाते हैं. इट्स ओके, दैट्स फाइन. So as you know, I got back from this break I went to, right? For about 5 to 6 days, I was away in Mallorca. And basically, क्या हुआ था कि जहाँ मैं गई थी वहाँ पे एक शो था जो जहाँ मुझे होस्ट करना था, होस्ट किया. और हमने सोचा कि हम वापस सैटरडे को वापस लंदन आएंगे. मैंने तो ना बोला, मैंने कहा कि मैं वापस तो नहीं आऊँगी, मैं तो रहूँगी वहाँ पे. तो एक फ्रेंड ने बोला मुझे कि तू यहाँ आके क्या करोगे, कुछ है भी नहीं यहाँ पे, ऑफ पीक सीजन है तो लोग इतने नहीं है, भीड़ नहीं है, और जहाँ मुझे जाना था वो भी बंद था. तो वो बोलते तुम क्या करोगे. तो मैंने कहा कि जहाँ मैं जाऊँगी ना, आई मेक द मोस्ट ऑफ दैट मोमेंट. आई सेड टू हिम, आई मेक द मोस्ट ऑफ द मोमेंट. सही, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पूल में जा रही हूँ, राइट, जहाँ होटल में पूल था, अगर मैं वहाँ पे जाऊँगी ना, तो आई मेक द मोस्ट ऑफ इट. आई सनबेथ, आई रिलैक्स, आई ईट ऑल द लवली फूड देयर इज, आई मेक द मोस्ट ऑफ इट. मे बी टेक सम पिक्चर्स एज वेल, बट पिक्चर्स फॉर मी वाजंट दैट इंपॉर्टेंट. फिर मैंने कहा उनको कि मैं बीच पे जाऊंगी, बीच में मैं नदी में, आई गो एंड वॉक इन द सी, आई लव वॉकिंग इन सॉल्ट वाटर, आई फील यू नो इट्स रिलैक्सिंग. मैं मार्केट में जाऊंगी, देखूंगी कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, मे बी आई वोंट बाय एनीथिंग, यू नो. सो आई वाज एक्सप्लेनिंग टू हिम. सो एनीवेज, वी बोथ वर टुगेदर एंड वी जस्ट टॉकिंग, एंड एवरी मोमेंट वी स्पेंड वी स्पोक अबाउट, सॉरी, वी ट्राई टू मेक एवरी पॉसिबल मोमेंट मेमोरेबल. And then I noticed something in myself. I slowed down a lot. I rested properly. I walked more. I think I mentioned before a couple of days back, when I said I was walking every day, average 10,000 steps every day. I ate less and I gave myself time to think clearly again. And I was thinking, my friend actually told me, that actually your life, no, what you need a change. क्योंकि सालों से मैं ये सेम रूटीन कर रही हूँ, सालों से. एंड आई नो अ लॉट ऑफ लिसनर्स आर डूइंग द सेम रूटीन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड इट्स लाइक यू आर यूज्ड टू इट नाउ, यू वोंट मेक दैट चेंज बिकॉज यू आर टू कंफर्टेबल. द थिंग इज, चेंज डजंट यूजली अराइव व्हेन एवरीथिंग फील्स ईजी. It happens when we step outside the normal routine. It happens when we step outside habits and environments that keep us comfortable. And while comfort can feel very safe for us, staying there too long can stop us from growing into the person we're meant to become. Recovering from a brilliant holiday can give anyone time to reflect on that. आप हॉलीडे पे जाओगे, आप काफी कुछ सोचोगे, आप काफी कुछ बारे में सोचेंगे, आप ये कहेंगे कि यार मैं ये चीज क्यों हर रोज नहीं करता हूँ, मैं अभी ऐसे हॉलीडे आके क्यों करता हूँ. Because you're too comfortable in your routine. And somewhere in that stillness, you start reflecting on new avenues in life and what a fresh start could actually look like. Sometimes we think that growth only comes from being constantly busy, but often in the quieter moment, when you're by yourself, or when you're just doing nothing, or when you're just resting or relaxing, you then start realizing something needs to change in me. Stepping out of our comfort zone doesn't always mean doing something dramatic. Sometimes it simply means allowing ourselves to pause, reset, and be honest about what no longer serves us. Now think about this carefully. This holiday reminded me that change begins when we stop clinging to comfort and start becoming open to possibility. Aap holiday pe jaoge ya aap kuch, you know, kuch break pe jayenge, I'm sure you'll go on a break, and you realize when you get there you're much happier, you're much calmer, because you're out of your normal routine. And maybe you'll then realize that you need a change. And when you go on this change, don't feel guilty about it. Just see it as a brand new journey which you actually deserve and you need to go through. So my friend said to me yesterday, Kaj, look forward to all the new avenues you've got coming for you. Go on this journey and enjoy it. And I think you should do the same.

0: लाइका गोल्ड
1: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट ट्रेवल हब world.com
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com. Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
4: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
3: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
4: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
3: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
5: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 Line.
4: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help two children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
6: भक्ति प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी
7: मत जाओ काना क्यों जा रहे हो
8: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं
6: देखिए कृष्णा राधा रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला
8: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा
6: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू
8: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी
9: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप
10: टेबल पे सिर्फ एक हीरो जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स
9: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर ऑल इन जयमिन पोटैटो चिप्स
10: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स देसी स्वैग इन एवरी बैग
11: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
12: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Gold Breakfast with Kajal. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: भाई जिनका आपको इंतज़ार है वो तो यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी जगह इस हॉट सीट पर बैठी है आपकी अपनी सरिता सबरवाल। सबसे पहले थैंक्स डॉनी ब्रास्को थे लाइका रेडियो पर, और लाइका गोल पर थी काजल, और अब वहाँ है खुश और यहाँ है सरिता। आप कहाँ हैं? उम्मीद करती हूँ आवाज़ की दुनिया के दोस्तों जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को एंजॉय कर रहे हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, कम ऑन, चीयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू एंजॉय। जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते, महकते और तिरकते हुए गाने तो चुन चुन कर लाई हूँ मैं। बाकी आपकी पसंद पर डिपेंड करता है कि आपकी पसंद की कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं। आज के प्रोग्राम में भी कुछ न्यूज़ हेडलाइंस होंगी, किसी का बर्थडे मना लेंगे, वो फिल्में जो आज के दिन रिलीज़ हुई उनका कोई गीत हो जाएगा, एंड सबसे बड़ी बात तो चिंतन होगा 11 बजे की खबरों के बाद। चलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं बैक टू बैक दो गीतों के साथ।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. This is Leica Gold. Reminisce those classics.

0: किशोरदा के दो रूप देखे आपने इन गीतों में. पहले गीत थोड़ा सैड था एंड थोड़ा स्लो था और ज़िंदगी की हकीकत थी, और दूसरे गीत में भी ज़िंदगी की ही हकीकत थी और किशोरदा का अलग सा रूप था. बहुत प्यारे थे दोनों के दोनों गीत, और उम्मीद करती हूँ दोनों गीतों को आपने पसंद किया. वैसे फिल्म का नाम बताने की ज़रूरत तो नहीं, पर फिर भी बता देती हूँ. बहुत से लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि किस फिल्म का गाना था. वह यादें तो ताज़ा किया कीजिए ना, देखा कीजिए, सोचा कीजिए कि कब देखी थी ये फिल्म, किसके साथ देखी थी, कब ये गाना बहुत फेमस हुआ था, और क्या आप भी इस गीत को गाया करते थे और किसके सामने गाया करते थे. बहुत सारी बातें जहन में आती हैं, तो क्या ऐसी ही बातें आपके जहन में भी आई तो ज़रूर बताइएगा. पहला गीत था सौतन फिल्म से, 1983 में आई थी ये फिल्म, और दूसरा गीत था ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, किशोरदा की आवाज़ में गाया हुआ गीत, अंदाज फिल्म से. सो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दोनों गीत राजेश खन्ना पर पिक्चराइज हुए थे. दूसरा गीत तो फॉर श्योर, बट पहला गीत सौतन का भी आई थिंक इट वॉज राजेश खन्ना. अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं. नंबर तो आपका जाना पहचाना है, इस नंबर के रास्ते आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज पर लिख कर भेज सकते हैं कि सरिता क्या कहा सौतन में राजेश खन्ना. हाँ थे टीना मुनीम के साथ, एंड आई थिंक पद्मिनी कोल्हापुरी भी थी. यस, थोड़ी थोड़ी याददाश्त तेज हो रही है सरिता की. अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि इस वक्त क्या रेट मिल रहा है पैसे का. यानी इंडिया अगर पैसे भेजना चाह रहे हैं तो SBI UK वाले क्या दे रहे हैं आपको.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई इंडिया में कहीं भी पैसे आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो बहुत आसान काम है. यू कैन गो टू SBI UK की ब्रांच में जा सकते हैं, किसी में ऑनलाइन कर सकते हैं, और बाय यूजिंग द यूनो SBI UK मोबाइल ऐप. और आज का रेट क्या है मार्केट में वो भी आपको बता दें कि आज आपको ब्रिटिश पाउंड के बदले, ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले मिल सकते हैं 128 रुपीज़ एंड 25 पैसास. तो देर किस बात की है, डिपेंड तो ये करता है कि कितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं. जितना बड़ा अमाउंट होगा उतनी अच्छी आपको रेट भी मिलेगा.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: ये है लाइका गोल्ड.

0: नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक। माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
2: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
3: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
2: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
3: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
2: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio. Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
3: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
2: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
3: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
2: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
4: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
5: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
4: ये तो बताओ, कोई पता चला?
6: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
4: साधु, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
7: शीघ्र शीघ्र।
6: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
8: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
3: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help two children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
11: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
12: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
11: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
13: भक्ति, प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
14: अच्छा कान्हा, क्यों जा रहे हो?
15: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
13: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
15: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
13: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू।
15: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
16: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
17: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागासन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
18: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Bhi aapko nahi lag raha hai ki Sarita kya pehle tino geet bade motivational inspiring the? Kya chintan sara din chalne wala hai? Nahi, aisi baat nahi hai. It happened to me ki zindagi par geet samne aaya aur maine kaha ki nahi, ye gana to play करना ही चाहिए. और मुझे उम्मीद है कि इस गीत को भी आपने ज़रूर पसंद किया होगा, जिसे मैंने मिस्टर इंडिया फिल्म से लिया था. 1987 की फिल्म थी और ये भी किशोरदा की आवाज़ में. क्या बात है, पहले तीन गीत जिंदगी से रिलेटेड और तीनों गीत किशोरदा की आवाज़ में. उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया. आपके सारे मैसेजेस मेरे सामने हैं. थैंक यू एवर सो मच सुबह सुबह आप मेरा साथ देने के लिए. जल्दी से अपने अपने रेडियो सेट के सामने बैठ जाते हैं, या फिर वैसे सरिता तो यही कहती है कान इस तरफ होने चाहिए, कान उधार चाहिए. बाकी जो काम आप घर के कर रहे हैं, अपने ऑफिस के कर रहे हैं, कहीं भी बैठे कर रहे हैं कोई भी काम, तो वो करते रहिए, सिर्फ और सिर्फ कान इस तरफ होने चाहिए. अब आपके कानों में कुछ न्यूज़ हो जाए तो न्यूज़ हेडलाइंस आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ. राइट भी, अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान में सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है और उसने कहा कि उसने होमर्स स्ट्रेट में अमरीकी जहाज़ों पर हुई ईरानी हमलों के जवाब में ये कदम उठाया है. वहीं ईरान का दावा है कि उसने मिसाइलें इसलिए

0: दागी क्योंकि पहले एक ईरानी तेल टैंकर पर हमला किया गया था। पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल आर एन रवि ने वहां के विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। राज्यपाल की ओर से आदेश जारी हो गया है एंड भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 की उपधारा 2 के खंड में से मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए कल ही उन्होंने प्रभावशाली पश्चिम बंगाल विधानसभा को उन्होंने भंग कर दिया। दरअसल पश्चिमी बंगाल विधानसभा के जो चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य एक अद्भुत टकराव की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा था और विधानसभा चुनावों में ये कांग्रेस की हार के बाद ममता बनर्जी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए 4 दिन हो चुके हैं और लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया कि सरकार कौन बनाएगा। सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली एकल पार्टी होने के नाते एक्टर विजय की तमिल का वेट्री खडम टीवी के ने तमिलनाडु के कार्यवाहक राज्यपाल राजेंद्र अरलेकर को पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। लेकिन राज्यपाल अरलेकर ने सरकार गठन के लिए जरूरी 118 विधायकों के समर्थन की कमी का हवाला देते हुए विजय को आमंत्रित करने से इनकार कर दिया। इस संबंध में राजभवन में जारी प्रेस विज्ञापन से कहा गया है कि टीवी के नेता विजय ने राज्यपाल से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि सरकार गठन के लिए तमिलनाडु विधानसभा में जरूरी बहुमत का समर्थन अभी तक हासिल नहीं हुआ है। और अब मनोरंजन से जुड़ी हुई एक खबर हो जाए। कैंस में फिर दिखेगा बॉलीवुड हसीनाओं का रुतबा। ऐश्वर्या राय के अलावा 2 टॉप एक्ट्रेसेस दिखाएंगी फैशन का जलवा। फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े उत्सवों में से एक है कैंस फेस्टिवल का आयोजन होने वाला है और बॉलीवुड सितारे भी इसमें शिरकत करने के लिए तैयार हैं। 3 हसीनाओं का जलवा देखने को मिलेगा। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्मी आयोजन में एक है कैंस फिल्म फेस्टिवल 2026 का आगाज होने जा रहा है 12th मई से 23rd मई तक। चलने वाले इस 79th महोत्सव में एक बार फिर से भारतीय सिनेमा की चमक दिखने को मिलेगी और इस साल कांस के रेड कार्पेट पर बॉलीवुड की कई दिग्गज अभिनेत्रियां अपनी अदाओं का जलवा बिखेरेंगी, जिसे लेकर प्रशंसकों और फिल्म जगत में भारी उत्साह है। कांस 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बॉलीवुड की 3 ग्लैमरस एक्ट्रेसेस तैयार हैं और इनमें से एक है कौन? ऐश्वर्या राय। दूसरी हो सकती है आलिया भट्ट और तीसरी अदिति राव हैत्री। सो ये थी कुछ एक मुख्य समाचार और बाकी के समाचार तो आप सुनेंगे ना टॉप ऑफ द आवर, तो सुनने के लिए तैयार है।
1: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
0: और जिंदगी से बाहर निकले मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाया हुआ ये गाना।

0: Nika Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: राइट, अ पाउंड इन योर पॉकेट कैन गेट यू टुडे. क्या क्या दे सकता है ये जान लीजिएगा. या कहाँ है सारी इन्फॉर्मेशन. चलिए कोई बात नहीं, ढूंढते हैं, मिल जाएगी. एंड ये इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाने जा रही हूँ कि आज आपका एक पाउंड आपको क्या दिला सकता है. A pound in your pocket can get you Indian rupees. कितने Indian rupees? 128.70 पाकिस्तानी rupees, 379.81 बांग्लादेशी टका, 167.36 अफगान अफगानी, 87.09 and US dollars 1.36.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: LIKA Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: गोल्ड का रेट इस वक्त मार्केट में है 111 pounds and 56 pence पर ग्राम.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
0: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: और भी आज के मैच के बारे में आपको बता दूं कि आज इंडियन प्रीमियर लीग का मैच होगा 3 बजे शुरू और डेली डेकन्स एंड केकेआर के बीच ये मैच होने वाला है. तो जैसे ही मैच शुरू होगा तो हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे.
0: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस. डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे. रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड regulated by the FCA. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
6: गारंटेड.
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
6: फोन 02085748410.
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: Search is changing.
10: Customers aren't just using Google anymore.
9: They're asking AI.
10: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
9: One business, one recommendation.
10: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
9: Will your business be the answer?
10: Or the one that got left behind?
9: The future of search has already started.
10: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
9: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
11: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश. एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
12: Chelmsford is now open. Tariq Halal has arrived.
9: 100% halal meat prepared with care every day.
12: From premium cuts to everyday essentials, quality you can trust is always on the counter.
9: And don't forget, get your favorite frozen items too.
12: Find Tariq Halal inside Chelmsford Bus Station Parade, right by the bus stop. Tariq Halal.
9: There is only one.
13: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Laika Radio.
14: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
16: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
17: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
0: Wake up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Laika Gold.

0: विचारों का वो सफर जो बदलाव की ओर ले जाए, उसे ही कहते हैं चिंतन, जो हमें सोचने को मजबूर करे, जो हमें बदलने के लिए कहे। कभी कभी हम रियलाइज ही नहीं करते हैं कि जो भी डिफिकल्टीज हमारी जिंदगी में आती हैं, तो उनसे हम क्यों दूर भागना चाहते हैं। एक बहुत ही प्यारी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जिंदगी की भाग दौड़ में हम सब कहीं ना कहीं थक जाते हैं, कभी काम से, कभी हालात से, कभी लोगों से, और कभी कभी खुद से भी। एक छोटे से कस्बे में रहती थी मीरा, बहुत सीधी साधी, बहुत मेहनती, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई, बूढ़ी माँ की दवाइयां, सब कुछ वही संभालती थी। पर एक बात थी, मीरा हमेशा मुस्कुराती रहती थी। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी मुसीबतें आए, कितनी कठिनाइयां आए, वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। लोग पूछते, मीरा इतनी मुश्किलों में भी मुस्कुराती कैसे हो? वो बस इतना कहती, जब तक दिल में एक दीपक जल रहा है, अंधेरा कभी पूरा नहीं होता। एक दिन कस्बे में एक बड़ा मेला लगा, सभी वहां गए और मीरा भी अपने बच्चों को लेकर वहां गई। मेले में एक बूढ़ा कारीगर बैठा था और उसके सामने सैकड़ों दीपक यानी दिए रखे थे। हर दीपक अलग अलग, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई टेढ़ा, कोई टूटा हुआ, कोई चमकदार और कोई गंदा सा। मीरा ने पूछा, बाबा ये सब दीपक इतने अलग अलग क्यों हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, बेटा क्योंकि हर दीपक की अपनी कहानी है, कुछ टूटे हैं फिर भी जलते हैं, कुछ पुराने हैं पर रोशनी देते हैं, और कुछ बस किसी के इंतजार में है कि उन्हें कोई जला दे। मीरा ने एक छोटा सा, थोड़ा सा टूटा हुआ दीपक उठाया। बच्चों ने कहा, माँ ये क्यों, ये तो टूटा हुआ है। मीरा ने जवाब दिया, बेटा क्योंकि रोशनी दीपक की शक्ल नहीं देखती, वो तो बस जलने की हिम्मत देखती है। उसने दीपक यानी दिया खरीदा और घर ले आई। रात को जब सब सो रहे थे तो मीरा ने उस टूटे हुए दीपक में तेल डाला, बाती लगाई और उसे जला दिया। उस छोटी सी लौ ने कमरे को रोशन कर दिया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, वो बोली, शुक्र है मैं अभी भी जल रही हूं। दोस्तों, हम सब की जिंदगी में कहीं ना कहीं टूटे हुए हिस्से होते हैं। कभी हालात हमें तोड़ते हैं, कभी लोग तोड़ते हैं, तो कभी वक्त। पर याद रखिए, टूटना हार नहीं है, बुझ जाना हार है। जब तक दिल में एक छोटी सी लौ भी बाकी है, जिंदगी में हमें फिर से रोशन कर सकती है। और आज
1: चिंतन, चिंतन।
0: और आज दिल से यही आवाज आ रही है कि रोशनी हमेशा लौट आती है।

और इस कहानी से जुड़ा हुआ मुझे एक गीत याद आता है, एक ऐसा गीत जो उम्मीद है, जो उम्मीद भी है, रोशनी भी है, हिम्मत भी है। ये गीत हमें याद दिलाता है कि चलते रहना है और चलते रहने में ही जीत है। जो इंसान हिम्मत हार देता है, अपनी मुश्किलों से दूर दौड़ना चाहता है, वो लाइफ में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। मुश्किलों से लड़ना, जिंदगी की हर चुनौती को हिम्मत से ओवरकम करना, यही जिंदगी है। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के। ये सिर्फ एक धुन नहीं है, ये जिंदगी का फलसफा है।

0: ये था आज का चिंतन। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ये सिर्फ एक धुन नहीं, ये जिंदगी का फलसफा है। हम सब की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि बस अब नहीं हो पाएगा, रास्ता लंबा है, थकान ज्यादा है और उम्मीद कहीं खो गई है। लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी हमें कभी भी एक ही जगह रुकने के लिए नहीं बनी। वो हमें धकेलती है, गिराती है, पर उठना भी सिखाती है। अभी जो कहानी हमने सुनी उस टूटे हुए दीपक की, वो हम सब की कहानी है। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा दीपक जल रहा है। कभी लौ तेज हो जाती है तो कभी धीमी, पर जब तक वो जल रही है, वो लौ जल रही है, अंधेरा हमें छू नहीं सकता। और ये गीत हमें याद दिलाता है कि हारना तब है जब हम चलना छोड़ दें, वरना हर कदम चाहे छोटा ही क्यों ना हो हमें रोशनी के और करीब ले जाता है। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, खुद पर होती है। थोड़ी सी रोशनी भी काफ़ी है अगर दिल उसे अपनाने को तैयार हो। थोड़ी सी रोशनी भी काफ़ी है अगर दिल उसे अपनाने को तैयार हो। जिंदगी कभी अंधेरी नहीं होती, बस हम कभी कभी आंखें बंद कर लेते हैं। आज के चिंतन के साथ जुड़ा हुआ गीत भी बहुत खूबसूरत था और आपने बहुत दफ़ा सुना ये गीत। हमें मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। फिल्म इम्तिहान से चुना था, किशोर दा की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत था। लेकिन इसके साथ मैंने एक और गीत प्ले करना चाहा था, चलिए वो लेटर ऑन इसी प्रोग्राम में अभी करती हूँ थोड़ी ही देर में। पर थैंक यू सो मच, आपके इतने सारे मैसेजेस हैं मेरे सामने, मैं बता नहीं सकती। लेकिन जिन्होंने भी मुझे मैसेज लिखकर भेजा है कि सरिता बहुत सुंदर चिंतन था, बहुत प्यारा गीत है और आपने जिस तरह से कहानी सुनाई वो भी बहुत अच्छी लगी, तो उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई SBI UK के जरिए अगर आप पैसे इंडिया भिजवाना चाहते हैं तो काम बड़ा आसान है। You can go to the branch, you can go online और आप अपने टेलीफोन ऐप से भी Yono SBI UK के ऐप के साथ पैसे ट्रांसफर करा सकते हैं। और इस वक्त बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले 128 rupees and 25 paisas.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Yeah, like on.

0: बैक टू बैक दो गाने सुने आपने, तेरी तस्वीर मिल गई शबीर कुमार का गाया हुआ गीत फिल्म बेताब से, सनी देओल की डेब्यू फिल्म थी और अमृता सिंह थी इनके साथ इस फिल्म में, 1983 में आई थी फिल्म जिसे बनाया था धर्मेंद्र जी ने। और दूसरा गीत सुना कब क्यों और कहां फिल्म से मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ और दिल तो है दिल दिल का क्या कीजिए, बहुत प्यारा गीत और उम्मीद करती हूँ दोनों गीत आपने पसंद किए। जहाँ भी बैठे आप सुन रहे हैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा साथ आपको पसंद आ रहा है। इस आवर के बाद फिर वीकेंड पर मुलाकात होगी, पर अभी इस आवर में तो आप मेरे साथ हैं, आपके मैसेजेस मुझे बराबर मिल रहे हैं जिसके लिए तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। जहाँ भी बैठे सुन रहे हैं जस्ट इंजॉय कीजिए, हमेशा खुश रहें और खैरियत से रहें, यही चाहती है सरीत।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India के जरिए अगर आप पैसे कहीं भी ट्रांसफर कराना चाहते हैं इंडिया में तो बहुत आसान काम है। You can go to the branch, you can do it online, और अगर आपके पास Yono SBI UK का ऐप डाउनलोड किया है तो कहीं भी बैठे आप पैसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। और आज भी बहुत अच्छा रेट दे रहे हैं, 128 रुपीज़ एंड 5 पैसेस, बट डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट, कितना ज़्यादा अमाउंट आप करा रहे हैं उतना अच्छा आपको रेट मिलेगा।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी,
3: गारंटेड।
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
3: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube, prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
7: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
6: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
7: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
6: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 02085077900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
9: This May, get ready for the biggest wholesale event in Southall. Spring Madness is live at iTech Wholesale from 11th to 17th May. Massive deals, unbeatable discounts and top brands like Taj, Trophy Rice, Tilda, VT, Kohinoor, Ashivad and Ahmed Tea. Plus, Amira Frozen, Royal Forest, quality ice cream and fresh fruit and veg at crazy prices. Free food tasting on the 13th and 14th. Free membership, free parking, open 24/7. iTech Spring Madness.
10: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 02 03 773 633 now. APTA bonded.
11: Mantra Holidays. What's your travel mantra? This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
12: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
13: ये तो बताओ, कोई पता चला?
12: गुरु गुरु,
14: इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
15: साधु, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
16: शीघ्र।
14: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
17: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
18: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
19: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: इस हफ्ते की हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक रही आशा पारिक जी। इनकी फिल्मों के बहुत से गीत आपने सुने, इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, लेकिन मैंने आज का गीत जो चुना था वो था फिल्म जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, और ये नासिर हुसैन साहब ने डायरेक्ट की थी। फिल्म के हीरो कौन थे याद है आपको? देवानंद साहब। बहुत खूबसूरत गीत था, उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया। और ऐसे ही कल के प्रोग्राम में भी, जी हाँ मैं कल आ रही हूँ ना 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आपका साथ देने के लिए, तो कल के प्रोग्राम में भी एक अच्छा सा गीत जरूर चुनूंगी आशा पारिक जी का। सुनते रहिए, इसी तरह से एंजॉय करते रहिएगा।
1: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: वेली वालों की जानिब से बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना फ्रॉम द फिल्म मेरे सनम हमदम मेरे मान तो जाओ कहना मेरे प्यार का बहुत प्यारा गीत था और ऐसे गीत आजकल कहाँ बनते हैं। चलिए भी आगे बढ़ते हुए आपको ज़रा याद दिला दें कि आतिफ असलम आ रहे हैं। लाइका रेडियो नेटवर्क इज़ द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ द आतिफ असलम कॉन्सर्ट टेकिंग प्लेस ऑन संडे 14th June एट द O2 लंदन। टिकट्स अवेलेबल एट AXS एंड द वेन्यू। और साथ ही ये भी एक दफ़ा बता दूँ कि लाइका रेडियो नेटवर्क हैज़ कन्फर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासान। और डिटेल्स आपको इनकी चाहिए तो laikaradio.com पर आप जा सकते हैं।
0: ये है लाइका गोल्ड।
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: updates for London at Breakfast and Drive.
1: ये है लाइका गोल्ड travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office. On 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
6: Atif Aslam live in the UK.
5: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
6: Book your tickets now at AXS.
5: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
6: Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट खाना 5-course लंच सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730099883
8: Packed for the trip? Gifts? Passport?
9: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
8: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
9: Simzy?
8: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
10: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com.
11: T's and C's apply.
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
13: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स
14: जस्ट Add hot water, wait for 5 minutes and taste the ethnic recipes like Sabudana Khichdi, Shira, Poha, Bhaji, Veg Biryani, Dal Bhat are ready to serve on your plate.
13: Zero mess, no stress. Same ethnic taste with German foods.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
15: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स

0: ये है लाइका गोल्ड।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द एफसीए।
2: ये आपको बता दें कि आज किसका मैच चल रहा है आईपीएल में, अरुण जेटली स्टेडियम में हो रहा है ये मैच जो दिल्ली में है, और दिल्ली कैपिटल्स एंड कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच है ये मैच, एंड 3 बजे शुरू होगा। एंड बाली जी फिर आपको अपडेट देते रहेंगे।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द एफसीए।
2: इस हफ्ते मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रवि जी की जगह मैंने इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाया, और उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातचीत, मेरे चुने गीत, मेरे चिंतन आपको पसंद आए। नेक्स्ट वीक मंडे से मैं बाली जी को कवर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले इस वीकेंड पे मेरी आपसे मुलाकात होगी। आपका पूरा दिन बहुत अच्छा बीते, आपके सोचे हुए काम पूरे हों, इसी तरह से आप हमारा साथ देते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ लवली एंड सुपर्ब वीकेंड।
3: दिस इज लाइक अ गोल्ड।

0: What a song, Kumar Sanu. Can you imagine watching him live at Royal Albert Hall? 25th of May, coming soon. Get your tickets from Eventbrite or Royal Albert Hall.
1: Welcome to Kajalon Breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Like a gold. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India, bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
4: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट TravelHubWorld.com.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location.

Oh, wow, and I got some good news for you here. And that is, हमारे दोस्त है सुरेश कुमार. जी हाँ, हर साल लेकर आते हैं Crazy for Kishore. And calling all Kishore Kumar fans, a special musical night featuring Ketan, Indrani, Sanjay and the 515 band. It takes place on Friday, 19th of June. Friday, 19th of June at the Prince Regent Hotel, Chigwell, Essex. Exclusive radio partners are Leica Gold Radio. और ये शो कभी मिस करने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि कंपेयर होंगे अरुणावा चक्रवर्ती. एंड देन वी गॉट लाइक आई रिपीट द वेन्यू, द प्रिंस रीजेंट होटल, मैनर रोड, चिगवेल, एसेक्स, IG88AE. And www.eventbrite.co.uk. You can book online on this one. And there is a number you can call, 07908-345-984. Yes, Ketan, Indrani and Sanjay. Crazy for Kishore.

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Ye hai Like a Gold. Like a Gold.
2: And don't forget, Leica Radio Network has confirmed a partnership with the premium hospitality brand Ragasan. Details at leicaradio.com. Ragasan. Kumar Sanu Live, Leica Radio Network is the confirmed partner of the Kumar Sanu Live concert at the prestigious Royal Albert Hall on Bank Holiday Monday, 25th of May.
0: This is Leica Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London, the Leica Group. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. Leica Extra podcast update.
2: Oh yeah, the update is for episode number 15. The title is Weddings and Beyond, hosted by Donnie Brasco. It's such a beautiful subject they've chosen, that's weddings and beyond, because there are so many questions unanswered. Are weddings now just a big Instagram show? Are intimate weddings the new luxury? ये वेडिंग्स के अंदर यंगस्टर्स का के क्या ख्यालात होते हैं कंपेयर टू द ओल्ड स्कूल वेडिंग्स का मतलब आज के दिनों में क्या है, ये सब डिस्कशन होगा और इतना मजा आएगा आपको. एंड काजल फ्रॉम लाइका गोल्ड मेक्स एन अपीयरेंस टू. दैट्स राइट, लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजॉन, Apple and other major streaming platforms. Weddings and Beyond, hosted by Donnie Brasco.
0: Leica Extra is here.
1: Ye hai
3: Leica Gold.
0: Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.
4: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambert.
5: Bali Brambert.
4: Gem in Foods, bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
7: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
7: विजिट TravelHubWorld.com.
8: 105 सुपरहिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी. फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे. टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk, कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655. सखणा रेजो
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start

0: from just 711,000 pounds.
1: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
0: high appreciation
1: in Dubai.
2: Are we there yet?
3: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
3: How? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simzy before we left London.
3: Simzy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
4: T's and C's apply.
6: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट खाना 5-course lunch सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
1: मंत्रा हॉलीडेज विशेस यू एंड योर फैमिली अ हॉलीडे सीजन फिल्ड विद जॉय लाफ्टर एंड Unforgettable moments as you celebrate. Start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
8: Mantra Holidays.
9: What's your travel mantra?
10: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEVESAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
11: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
12: Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles.

अखियों के झरोखों से 1978 की फिल्म एंड व्हाट लवली म्यूजिक देयर इज, और हेमलता जी और शैलेंद्र सिंह ने क्या गाया। और आज रात को तो एक हंगामा होने वाला है। हंगामा क्या होने वाला है, ओ माय गॉड, मैं क्या बताऊं आपको। थ्री बिग वाला बर्थडे, यू नो आवर वंडरफुल लिसनर एंड अ वंडरफुल यू कैन से person who is not only a great listener of Laika Gold but also a close buddy of ours, and that's Kishore Pandya and Farhat Hussain, who has been bringing Dhuandar shows for so many years to us. Farhat Hussain and Prakash Bhai PTC, that's right, that's from Kalyanji Anandji, that's Anandji Bhai's family, yes, his son-in-law, that's Prakash Bhai PTC. All three of them celebrating Happy Wala birthday, and they are all celebrating at Ashwin Bhai's Videorama. That's right, the right place to celebrate. And he has invited me, Raj Vardhanji, Kamlesh Bhai, and all the UK promoters and VVIP guests, and Irfan Bhai Musa from Houston, and promoter and owner of a radio station that's from Houston all the way. And it's going to be hangama there tonight. Of course, I'll try to get there, but then let's put it this way. Happy birthday to all the three. And ek dosti wala gana to banta hi hai, naturally. And बॉब ने इतना अच्छा मैसेज भेजा, और विजय बोला ने, और अनवर भाई ने, तस्लीम ने, लाइका गोल्ड टीम, पूरी टीम ने मैसेज भेजा है उनको हैप्पी बर्थडे के लिए। सो विश यू अ वेरी हैप्पी द बर्थडे विद दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, मेरी दोस्ती मेरा प्यार।

0: Wow, these songs are so evergreen, aren't they? Any music that you get from the film Karma is always appealing, isn't it? Bhuli Bisri Yaadein, are you ready for some competition? Yes, we are going to do a competition for this beautiful show. Kal maine ek phone call mara, and that was Veda, who had come into on our radio station on air, and she sang a few songs. And now I'm going to call somebody, but I hope he will be available. Actually, the show is Bhuli Bisri Yaadein, Trilok Sharma and Veda. It's a wonderful friend of all of us called Bharat Shah. Bharat Shah is a wonderful personality who has always supported Trilok Sharma and Veda and many other artists in the UK. So Bharat Shah is presenting Trilok Sharma and Veda in Bhuli Bisri Yaadein. Ab aap puchenge kahan pe hai? Usse pehle aapko bata dun ke live orchestra by Bhavin Mehta. Bhavin Mehta is a very talented musician with his orchestra. And in the orchestra, there is Mittal Purohit. Yes, Mittal Purohit. Purohit jab naam aata hai, to humare listeners bhi to hai. Hai na? Dilip aur Charu, unka beta. And we got Farnaz on the guitar. And we got Evans on the octopad. And we got Bhavin himself on the keyboard. Supported by Veda, of course. Saturday, 9th of May. That is tomorrow. And I, aapka khadim, Bali Brahmbhatt, main comparing kar raha hoon ye show. And it is a show of shows, believe you me. Tickets are available from Videorama. Ashwin ko phone karoge on 07976-723-892. Ashwin Bhai is also available on landline 0208-907-0116. That is Videorama. And of course, you can have Bharat Shah's number as well, 07971-844-493. 07971-844-493. And we have tickets that are really going so fast. I think the last number that I heard was 280 gone. So I think 20 ek ticket baki rahi hongi. So last minute pe aapko bhag daud na karna pade. Is competition mein bhag lijiyega. And it's been sponsored by Masala Mart, Taste of Kenya, SBI UK, Gayatri, and of course, Leica Gold. Yes, ye show miss mat karna. Aur main try karta hoon to call a wonderful person who might sing a few songs. And that is none other than, bata do, nahi, pehle phone lagate hain. Phone laga ke phir try karte hain ke naam bataye. Let's see. Yes, it's Trilok Sharma on Leica Gold. You are on air, my brother.
1: Thank you, Bali Bhai.
0: Congratulations for this beautiful show that you are bringing. And log badi betabi se intezar kar rahe hain ki aap hame bataye kal ke show ke bare mein.
1: Kal ek hum program kar rahe hain, Bhuli Bisri Yaadein, jisme हम लोग गाने वाले हैं ओल्ड सॉन्ग्स, मुकेश जी के, रफी साहब के, तलत महमूद जी के, मन्ना डे साहब के, और जितने भी लेजेंड्स हैं हमारे,
0: किशोरदा
1: के ऊपर है, इतने लोगों के हम लोग गाने वाले हैं।
0: हेमंत कुमार के गाने हैं,
1: हेमंत कुमार जी के भी हैं,
0: वाह
1: गाने हैं इसमें।
0: कल वेदा जी ने बहुत अच्छा मतलब दो तीन लाइनें हमको सुनाई थी। आप भी हमको, अभी आपने इतने सिंगरों का नाम दिया राइट, तो सबके एक वन लाइनर हमें दीजिए ना।
1: ठीक है।
0: दिस इज त्रिलोक शर्मा बाय द वे टू एवरीबडी, ही इज ऑन एयर एंड टुमारो ही इज डूइंग दिस ब्यूटीफुल शो एट अल्बर्टन। मैं एड्रेस सब देता हूँ आपको। यस, अल्बर्टन स्टेशन के बाजू वाला जो स्कूल है ना, वहाँ पे है। क्या स्कूल का नाम क्या है? अल्पटन कम्युनिटी स्कूल पे अभी 5 बजे दरवाज़ा खुल जाएगा और फिर उसके बाद 6 बजे डिनर होगा और 6 से 8 आराम से बैठ के डिनर डिज़र्ट सब कुछ खाइएगा और 8 बजे शो शुरू हो जाएगा। तो टिकट्स कितने की है?
1: 20 pounds.
0: Wow, with food. So dinner ke saath, matlab itna shandar show with the beautiful orchestra, and I will be anchoring with you, aren't I?
1: Oh yes.
0: Okay, ek kaam karo, please one liner suna do, 2-3 singer ke.
1: Theek hai, main pehle Rafi saab ko sunata hu.
0: Yes, please.
1: Dil ki awaaz bhi sun, mere fasane pe na ja. मेरी नजरों की तरफ देख जमाने पे न जा दिल की आवाज भी सुन।
0: वाह क्या गाना है
1: मुकेश जी का। इन जीवन कैसे बीता पूछो मेरे दिल से पूछो मेरे दिल से।
0: वाह
1: हेमंत कुमार।
0: ओके
1: अदितिया दिल ने कहा वो तुम झूमती बहार है कहा वो तुम
0: प्यार से पुकार लो जहां हो तुम
1: प्यार से पुकार लो जहां।
0: अनदर हिट ब्यूटीफुल सॉन्ग। और एक और हो जाए किशोर दा
1: का गाता हूँ। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते
0: Wow, this is so beautiful. त्रिलोक जी मैं एक ही बात कहता हूँ कि ऑडियंस आपको क्या कहना चाहती है। तालियों से स्वागत कर रही है। अभी मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, आप जितने भी गाने गाते हो स्टेज पे, इतने सालों से मैंने देखा है 1000-2000 गानों से ऊपर आप सब जबानी हैं, आपके दिमाग से आप गा लेते हो विदाउट एनी पीस ऑफ पेपर या मोबाइल कुछ भी यूज़ किए बगैर, कैसे करते हो?
1: मेरे को बस ऊपर वाले की देन है।
0: Wow, ये भी देखने वाली चीज है। सो वेदा जी के साथ रिहर्सल सब चल रहे हैं ना?
1: सब हो गया है। वेट कर रहे हैं आप लोगों की।
0: फैंटास्टिक।
1: शो की शोभा बढ़ाएं।
0: हाँ जी That's right. So, एक कॉम्पिटिशन करने वाला हूँ जिसमें आपका नाम होगा त्रिलोक। एवरीबडी हैज टू टाइप त्रिलोक TRILOK विद योर फुल नेम एंड टेलीफोन नंबर एंड एंड ऑफ द आवर त्रिलोक जी इज गोना चूज अ विनर। मैं आपको सारी कॉपीज जितने भी लोग यहाँ कॉम्पिटिशन में भाग लेंगे वो मैं आपको फॉरवर्ड करता रहूँगा एंड नियरर 4 o'clock यू हैव टू गिव मी अ नेम ऑफ अ विनर हु विल गेट 2 tickets। थैंक यू त्रिलोक जी, बहुत अच्छा लगा एंड कल तो हमारी मुलाकात होने ही वाली है। सो ऑल द बेस्ट टू यू।
1: ओके सी यू टुमारो वाली
0: भाई। चीयर्स एंड स्पेशल थैंक्स टू कमलेश भाई हु हैज बीन वेरी वेरी हेल्पफुल, हमारे मार्केटिंग हेड हु हैज बीन वेरी वेरी हेल्पफुल इन ऑर्डर टू डू दीज इंटरव्यूज एंड अनाउंसमेंट्स।
1: थैंक यू वाली भाई एंड कमलेश भाई।
0: चीयर्स, ऑल द बेस्ट।
1: ओके टेक केयर,
0: बाय बाय। एंड Wow, I'm looking forward to those songs with the live orchestra and sare gaane zabani inko yaad hai. So do get into this competition and just write Trilok and then your full name and telephone number and you might be lucky to get 2 tickets.
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today could get you up to £128.25. £1 in British sterling today could get you up to 120 8.25. The rates keep changing. The latest rate is 128.25 Indian rupees for a British sterling pound. Remember to make your transfers via branch, online, or by using the Yono SBI UK mobile app.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Like a Gold.
3: You're listening to Bali Brahmbert in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
4: Two businesses.
5: Same town.
4: Same service.
5: One appears on page one of Google.
4: The other doesn't.
5: Guess which one gets the customer?
4: The truth is brutal.
5: The first page of Google gets the business.
4: Everyone else gets what's left.
5: So here's the real question.
4: When your customers search for what you sell, do they find you?
5: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
4: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
2: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
6: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
2: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
6: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
2: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
7: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.40% on non-withdrawable fixed deposits. Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
6: This May, get ready for the biggest wholesale event in Southall. Spring Madness is live at iTech Wholesale from 11th to 17th May. Massive deals, unbeatable discounts and top brands like Taj, Trophy Rice, Tilda, VT, Kohinoor, Ashivat and Ahmed Tea. Plus, Amira Frozen, Royal Forest, quality ice cream and fresh fruit and veg at crazy prices. Free food tasting on the 13th and 14th. Free membership. Free parking. Open 24/7. iTax Spring Madness.
8: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
9: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
10: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
11: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
12: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर.
11: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियल, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
12: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन.
11: स्टेप इन and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery. Delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
13: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition?

0: best quality and same ethnic taste.
1: Jai Mint Fryans, available at your nearest ethnic grocery stores.
2: Leica Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर, DAB Digital Radio पर, Alexa पे बोलो play Leica Gold और online सुनो LeicaGold.com पे.
3: Artist of the week is brought to you by our new podcast Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
4: बताना जरूरी है, बहारों के सपने का गाना है. क्या जानू सजन, हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक आशा पारेख. ये ब्लैक एंड व्हाइट की फिल्म थी, उसमें से एक ही गाना, ये गाना वॉज इन कलर, नासिर हुसैन की फिल्म.

0: अवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज आशा पारेख. एंड इस फिल्म के अंदर हीरो मर जाता है एट द एंड. तो फर्स्ट वीक में इतना हंगामा हो गया पब्लिक में कि राजेश खन्ना को मार डाला इन्होंने, हीरो को. तो फिर इन्होंने सेकेंड वीक में स्टोरी चेंज कर डाली और हैप्पी एंडिंग कर दिया. द हीरो इज अलाइव विद द हीरोइन. ये है बहारों के सपने, उसकी स्टोरी. अवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक आशा पारेख.
1: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
2: TravelHubWorld.com kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays humse सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट travelhubworld.com.
4: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश. एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
5: Chelmsford is now open. Tariq Halal has arrived.
6: 100% halal meat prepared with care every day.
5: From premium cuts to everyday essentials, quality you can trust is always on the counter.
6: And don't forget, get your favorite frozen items too.
5: Find Tariq Halal inside Chelmsford bus station parade, right by the bus stop. Tariq Halal.
6: There is only one.
7: आ सप्टेम्बर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे.
8: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर.
7: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
8: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे
7: दर्शन पण अने यूरोप पण.
8: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे.
7: कॉल 0208900-2323. द स्टार टूर्स.
8: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
6: दिस ईद स्किप द क्यूज एंड सेव विद Ambala. प्री ऑर्डर बिफोर द 10th ऑफ मई एंड एंजॉय 20% ऑफ योर ऑर्डर. यूज कोड अर्ली ईद सेवर ऑनलाइन or in store, from stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait, the offer ends on the 10th of May.
9: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142. इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
10: Discover the best of Portugal with a fantastic Lisbon and Porto Twin City Center break with Skylord. Fly from the UK and spend 3 nights exploring vibrant Lisbon with its historic streets, trams and riverside views. Then travel by train to beautiful Porto for 3 more nights, discovering its famous wine cellars and charming old town. Skylord prices start from just £339 per person. For multi-center city break packages with a difference, see skylordcruiseandholidays.com.
6: Call 01923-883100. Atoll protected.
11: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
12: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: के ना अलग अलग शहरों में लाइव राइसलिप अल्बर्टन लूटन पॉटर्स बार फिंचली साउथ लंदन अने ईस्ट लंदन हास्य मनोरंजन अने फैमिली साथे एंजॉय करवानू परफेक्ट नाटक आज ज कॉल करो पीआर पटेल ऑन 07957555226 वन इंची जोटे करीबूनी।
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
2: मंत्रा हॉलीडेज विशेस यू एंड योर फैमिली अ हॉलीडे सीजन फिल्ड विद जॉय लाफ्टर एंड Forgettable moments as you celebrate. Start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. Apta bonded.
3: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: This May, Spring Madness Trade Week at iTech Wholesale from the 11th to 17th May.
5: Massive deals, unbeatable discounts and top brands
4: like Taj, Trophy Rice, Tilda, Viti, Kohinoor, Ashirwad and Ahmed Tea.
5: Plus, Amira Frozen, Royal Forest, quality ice cream and fresh fruit and veg at crazy prices.
4: Free food tasting on 13th and 14th May. Free membership, free parking, open 24/7.
6: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLY Eid Saver online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
7: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
8: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
9: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal.

0: दिल क्या एक शीशा है, इसका मतलब ये टूटने का डर है। वैसे अश्विनी को देखकर के बिल्कुल नहीं लगता कि दिल टूट सकता है, इसलिए वो आपका साथ निभाएंगी बिटवीन 7 and 10 ऑन द इवनिंग शो। डू कीप हर कंपनी। एंड ये जो फीचर जो सैंडी करते हैं, ये या वो, उसका जवाब तो मुझे आपको देना है ना, कि मतलब आई सेड टू यू कि अगर इफ़ यू हैड द चॉइस ऑफ चूजिंग फ्री टिकट्स टू गो एंड सी इधर तीसरी मंजिल या कटी पतंग, कौन सा आप जा करके देखेंगे? सो अश्विनी, विच वन वुड यू सी, तीसरी मंजिल या कटी पतंग?
1: तीसरी मंजिल
0: ना। अच्छा, वो यहाँ पे ना क्या हुआ कि लोगों ने जोश में जाकर के तीसरी मंजिल का खूब वो दिया, फिर मैंने कहा कि तीसरी मंजिल इज मीनिंग, तो जोश में लोग आकर के कटी पतंग पे आ गए, फिर मैंने कहा ये तो हेड टू हेड अब हो गया, अब कौन जीतेगा, जीतना तो था बस इसी को। सो आई सी यू सून, until next time, you're gonna die, don't be late. I know you won't, because you are simply great. Tisri Manzil. Yes, sir.

0: लंदन के वेदर की बात करें तो लाइट क्लाउड्स एंड लाइट विंड्स हैं विद मिनिमम ऑफ 9 डिग्रीज टुनाइट। टुमारो इट विल बी 21 डिग्री सेल्सियस सनी इंटरवल्स एंड 9 डिग्रीज मिनिमम। मैनचेस्टर के वेदर में 9 डिग्रीज होगा टुनाइट एंड लाइट रेन्स एंड लाइट विंड्स हैं। कल होगा 16 डिग्रीज मैक्सिमम एंड 6 डिग्रीज मिनिमम।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. Ashwini.
0: क्या बात है, सुहानी शाम हमें ले चलिए म्यूजिकल नाइट की तरफ। तो फ्राइडे यानी फैंटास्टिक फ्राइडे मनाने के लिए क्या आप सब हैं तैयार? मैंने कहा था कि आरजे अश्विनी बन जाएगी डीजे अश्विनी, खा पी के बैठे ना, सारी कैलोरीज बर्न करनी है, पहले हो जाइए दो तीन बैक टू बैक गीत।
2: लाइक अ गोल्ड, लेट्स रिटर्न टू द बिगेस्ट हिट्स बैक टू बैक, स्पॉन्सर्ड बाय travelhubworld.com। फॉर द बेस्ट सर्विस एंड अनबीटेबल प्राइसेस विजिट travelhubworld.com। travelhubworld.com,
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता।
4: ट्रेवल हब
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: लाइका स्प्रिंग हिट्स ऑन लाइका रेडियो नेटवर्क।

0: अश्विनी इन फॉर अनीसा नासिर।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। आहा।

0: भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। फ्राइडे इवनिंग है तो फैंटास्टिक फ्राइडे के लिए हो गए आप सब तैयार, है ना? पान भी खिलवा दिया, ढोल भी बजवा दिया गंगा किनारे के अगर आप हैं तो क्या बात है, कंग्रेचुलेशन। ये सॉन्ग फिर अपने आप को डेडिकेट कर लो, नहीं थे तो कोई बात नहीं, बस हम यहीं से ऐसे समझ लेंगे कि हम गंगा किनारे से हो के आए अलॉन्ग विद दिस ट्रैक। भाई पूछिए आप सबसे कैसे हैं आप सब, बढ़िया है ना? कल मैंने कहा था कि आरजे अश्विनी बन जाएगी डीजे अश्विनी, तो खा पी के तैयार, कैलोरीज बर्न करने के लिए रेडी। चलिए बढ़ेंगे आगे, लेकिन उसके पहले हमेशा की तरह असाइनमेंट है। आज फ्राइडे है तो फ्राइडे तो थोड़ा फन मस्ती वाला भी सवाल होना चाहिए ना। अच्छा, स्कूल डेज में सभी लोग हम लोग स्कूल गए हैं, ठीक है, तो हर किसी के पास में स्कूल की कोई ना कोई मेमोरी होती है। फॉर मी व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज कि मेरी जो स्कूल की जर्नी थी उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर था GCSE, और GCSE में पता है क्या था कि आई यूज टू बी पनिश्ड, या पनिशमेंट इज़ द वर्ड एक्चुअली एशियन कंट्रीज़ में यूज़ होता है, इंडिया में तो पनिशमेंट वर्ड ही यूज़ होता है। सो हिस्ट्री की जो मेरी टीचर थी अंजुम टीचर, एवरी हिस्ट्री का पीरियड शी यूज़ टू आस्क मी कि आओ यहाँ पे जो बोर्ड है उसके सामने खड़े हो जाओ, ओके, और पूरी क्लास के सामने आके मैं खड़ी होती थी। और मेरा गुनाह क्या था, गुनाह यही था जिसकी बदौलत मैं आज आप सबके सामने बैठी हूँ, एंड दैट इज़ आई वॉज ऑलवेज टॉकेटिव, ठीक है, तो मैं गप्पे मारती हूँ इसलिए मुझे पनिश किया जाता था कि आओ क्लास के सामने आके खड़ी हो जाओ और बुक लेके रीडिंग करो, हिस्ट्री के लेसन्स पढ़ो, तो दैट यूज़ टू बी माई पनिशमेंट। सवाल आप सबसे यही है, मेरी हिस्ट्री ज्योग्राफी मैंने आपको भी बता दी है, तो आपसे ये सवाल है कि स्कूल डेज की आपकी क्या मेमोरी है जो अभी भी आप जब आपको याद आती तो आप हंसते हो यार कि ये क्या है। विथ मी ऑल माई स्कूल फ्रेंड्स स्टिल रिमेंबर, हमारा जो स्कूल का ग्रुप है अभी भी जब बात होते हैं मेरे फ्रेंड्स मुझे अभी भी छेड़ते हैं कि यार तू एक ऐसा हिस्ट्री का पीरियड नहीं गया जब तू क्लास के सामने तुझे खड़ा नहीं किया गया कि आओ यहाँ पे खड़ी हो जाओ, बहुत गप्पे मारती हो। अच्छा, मैंने गप्पे नहीं मारे थे यार, बहुत बार ऐसा होता था कि मैं चुप बैठी थी, बट स्टिल आई यूज टू गेट दैट पनिशमेंट। ऐसे ही आपकी अगर कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथ्स की कोई यादें हैं मुझे जरूर बताइए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling today, you could get up to 128 Indian rupees 25 paise. Remember to make your transfers via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show. Like a gold. The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
2: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
1: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
2: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
1: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
3: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
3: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
6: लंदन एंटरटेनमेंट दी सब तो वड्डी रात आ रही है। फोर पिलर्स एंटरटेनमेंट्स लिमिटेड प्रेजेंस ABPD अवार्ड्स UK 2026। लाइव परफॉर्मेंसेस बाय नवीन कुंद्रा, मंजीत बॉबी, निकी सेठी ते होर जबरदस्त आर्टिस्ट्स। 9th मई शाम 6 बजे द सेंटर बैंकवेटिंग सुइट साउथ हॉल। फॉर टिकट्स कॉल मंजीत बमरा एट 7956300367। ABPD अवार्ड्स UK 2026 एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
7: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
8: No more worries for me or you.
9: Southall Travel, at all protected.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
11: भक्ति, प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
12: मत जाओ काना, क्यों जा रहे हो?
13: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
11: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
13: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
11: कृष्णा अवतारम इन सिनेमाज नियर यू।
13: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
14: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
15: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
16: Like a Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर। Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे।
17: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: भाई जिन्होंने अभी अभी शो ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। मिला लेते हैं एक बार घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 31 मिनट्स पास्ट 7 एंड फुल ऑन मस्ती चल रही है। मैंने आप सबसे सवाल पूछा क्या यार, पहले तो मैंने अपनी राम कहानी बताई कि किस तरह मेरी हिस्ट्री की टीचर मुझे हर समय हर क्लास में, मतलब जब भी वो क्लास होता था, दैट सेशन यूज टू बी देयर, शी यूज टू पनिश मी, मैं बातें करूं ना करूं, ओके आई यूज टू गेट पनिश्ड। अभी हुआ ये कि मैंने मेरे सारे जो लिसनर्स हैं उनके दिल के तार जो है मैंने छेड़ दिए आज। अब सब लोग अपनी अपनी राम कहानी मुझे सुना रहे हैं। अच्छा, नीलेश जी का कहना है कि भाई आई एम नॉट ब्लोइंग माई ट्रम्पेट, लेकिन मैं स्कूल में टॉपर था, क्या बात है। हमको अभी पता चला, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू नीलेश जी। उन्होंने कहा कि मैंने पापा से पूछा था कि मुझे बाइसिकल लेके देंगे, तो उन्होंने लेके दी। और भी कई लिसनर्स हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम लोग दूसरी कंट्री में थे तो हमें इंग्लिश बोलने के लिए जो है पनिश किया जाता था, कि अगर हमने स्वाहली और गुजराती में हम बात करते थे, केनिया से है शायद, तो कहते हैं कि इंग्लिश में अगर बात नहीं की तो पनिशमेंट मिलती थी। हाँ, ये तो एक्चुअली ना हमारे स्कूल में भी होता था कि हमारे टीचर्स बोलते थे कि भाई इंग्लिश में बात करो, लेकिन नहीं, हमें तो हमारे ऊपर तो हिंदी चढ़ी हुई थी उस टाइम पे। सो एनीवेज, यस, प्रोग्राम फुल ऑन स्विंग में चल रहा है। सब लोग मुझे बता रहे हैं कि किस तरीके से वो कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, तो यही चाहते हैं कि आप लोग शो एंजॉय करो। और इस आवर का पहला फीचर है यादों की बारात। यादों की बारात में किशोर कुमार और मधुबाला पे फिल्माया गया ये गीत मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ, चलती का नाम गाड़ी। एंजॉय करिए और अपनी कहानियाँ बताइए मुझे। बिल्कुल, इट्स फ्राइडे, फुल ऑन सुनना ही है मैंने।
1: Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.

0: ये एंड में जो रोती है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। डिस्को डांसर 1982 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस फिल्म से पार्वती खान की आवाज़ में आप सबको सुनाया ये गीत। अच्छा जी, आज मैंने बोला क्या नहीं कि अटेंडेंस रजिस्टर खुल गया है, तो हमारी जो साइलेंट लिसनर जो कभी कभार आके हाय हेलो करके जाते हैं, वो अभी तक बैठे हैं ऐसे ही। हेलो दीदी आप, यस मैडम, खाना बनाते बनाते आप सुन रही है ना, मुझे मुस्कुरा रही ना। एंड सर आप भी मैच को म्यूट करके देख रहे हो, यहाँ पे रेडियो भी सुन रहे हो। चलो फटाफट, अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, हाय हेलो कुछ करो फटाफट भाई। अगले आवर में हम लोग जा रहे हैं सेकंड आवर का, हमारा फीचर होता है इमोशन ऑफ द डे। फैंटास्टिक फ्राइडे में क्या लेके आई हूँ सुनाऊंगी कुछ ही देर में। आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कोई चाय पिला रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई कह रहा है कि भाई हम दुनिया जहाँ के अलग अलग कोनों से तुम्हें सुन रहे हैं। बस यही तो चाहते हैं, संगीत के माध्यम से आप और हम जुड़े। और फ्राइडे जो होता है वो तो फुल ऑन मस्ती वाला शो होता है। कितनी सारी स्कूल की यादें सब लोग अपनी अपनी शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार तुम तो स्कूल में उठा के ले गई कहीं हमें। यही तो चाहती हूँ कि देखिए हम लोग बचपन में ना, वो जो इनोसेंस हम में होता है, वो सब इनोसेंस ना धीरे धीरे हम लोग खो देते हैं। अगर वो इनोसेंस हम में आ जाए तो लाइफ, हमेशा जो मैं एंड ऑफ द शो बोलती हूँ कि लाइफ सुंदर है, इसे कॉम्प्लिकेटेड हम बनाते हैं, है ना। जब तक वो इनोसेंस था तब तक लाइफ ब्यूटीफुल थी, और जैसे जैसे वो इनोसेंस जाने लगा और जैसे जैसे हम थॉट पोल्यूटेड होने लगे तो चीज़ें गड़बड़ा लेंगे। लेकिन अभी एवरी इवनिंग शो में आप मज़ा मस्ती करेंगे, अच्छा अच्छा संगीत सुनेंगे, और यही संगीत आपको जो है फिर से रिफ्रेश करेगा। सेकेंड आवर की तरफ बढ़ रहे हैं आप और हम, लास्ट ट्रैक नाज़िया हसन की आवाज़ में।
1: Leica Radio Network, broadcasting across Greater London. The Evening Show with Ashwini.

0: reminisce those classics on Like a Gold.
1: भाई मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 15 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। बता दूं आप सबको, कल सुबह आई विल बी कवरिंग रितुज शो, तो कल सुबह 10 बजे आपकी और मेरी मुलाकात फिर से होने वाली है। मैंने कहा कि भाई आप लोग निकल जाएं, उसके पहले तो बता दूं कि कल सुबह फिर से मेरा साथ देने हाजिर हो जाइएगा, बहुत मजा मस्ती करेंगे। इट्स गोइंग टू बी सैटरडे मॉर्निंग, तो सैटरडे मॉर्निंग तो ऐसी बड़ी उत्साह भरी होती सबकी, है ना। ओके, तो उत्साह सभी का होता है, लेकिन कई कई बार ये हो जाता है कि जब आप अपसेट हो जाते हैं तो वो अपसेट होना कितने लोगों को भारी पड़ सकता है। तो चाइना में एक इंसान को $1600 का फाइन लगा। अब ये जो है, ये महाशय पता नहीं इन्होंने क्या ही इनके सिर में खुरापत थी, तो $1600 इन्होंने वन पेनी जो होता है, जो भी चाइना में जो करेंसी चलती है, उसमें उन्होंने ढेर सारे कॉइन्स भेज दिए भाई कि ये मेरी तरफ से फाइन मैंने दे दिया। पूरे दिन भर में उन सारे कॉइन्स को गिनने के लिए 18 लोग लगे, 18 पीपल वर काउंटिंग दोज कॉइन्स, $1600 के कॉइन्स जो थे। अब जब 18 लोगों को वहाँ पे लगाना पड़ा तो कितना भारी पड़ा होगा उस काउंसिल को जहाँ पे जिन्होंने इनके ऊपर टैक्स लगाया था। भाई बदला लेने के तरीके ना सबके अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट ट्रैक मोहम्मद रफी एंड सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में फर्ज फिल्म से।
0: The Evening Show with Ashwini.

0: Feel good track brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ye hai Laika Gold.
3: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 34 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी। सेकेंड आवर में आपकी हमारी एंट्री हो चुकी है, तो सेकेंड आवर में होता है इमोशन ऑफ द डे। इमोशन ऑफ द डे की तरफ चलेंगे, लेकिन उसके पहले ज़रा बात हो जाए जिस तरीके के कपड़े हम पहनते हैं। जी, रंगों के बारे में हमने एक बार बात की थी शो में कि किस तरीके से कलर्स जो है हमारे मूड पे इफेक्ट करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि डेनिम्स जो जीन्स हम पहनते हैं यार, मतलब उसको एक तो वो 10-15 बार पहन लो, उसके बाद में कभी तो वो वॉश करनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ तो ये, और बड़ी ड्यूरेबल चीज़ बनाई। तो जीन्स एक्चुअली बनी कब थी? तो जीन्स बनी थी इन 1870 एंड इट वॉज इन्वेंटेड इन 1870 एज ड्यूरेबल हैवी ड्यूटी वर्क वेयर फॉर लेबरर्स, माइनर्स एंड काउबॉयज हु नीडेड clothing that wouldn't fall apart. They were patented in 1873 by Jacob Davis and Levy to address a need for stronger pants. Okay, तो ये थी history of jeans, कैसे, क्यों, किसके लिए बनाई गई थी। हर चीज जो हम use करते हैं कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई तो ज़िंदगी में अनसेटिस्फाइड रहा होगा। उसकी बदौलत देखो ना हम लोग कितनी लग्जरीज में रहते हैं, है ना। होता है कभी कभी अनसेटिस्फाइड रहना दूसरे लोगों के लिए भी कितना मतलब कन्वीनियंस बना के जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपने सोचा हो कि ये कहाँ से और कब बनाई गई होगी, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक अनसेटिस्फाइड इंसान ज़रूर रहा है।
0: Listen wherever you are by downloading the Laika Radio mobile app now. This song is brought to you by Kumar Shanu, live at Royal Albert Hall with exclusive radio partner Laika Radio. One date only, May 25th.
3: इमोशन ऑफ द डे में फैंटास्टिक फ्राइडे में लेके आई हूँ तीसरी कसम से मन्ना डे की आवाज में चलत मुसाफिर।
2: Laika Gold.
0: Laika Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.
2: Emotion of the day. Emotion.

0: उषा मंगेशकर की आवाज़ में इम्तहान, लहू के दो रंग, इस फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत। मिला लेंगे एक बार घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 46 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। भाई हम आप लोगों के लिए गोल्ड नाइट ओवरनाइट सर्विस लेके आते हैं। आप रात में काम कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो ज़रूर सुनिएगा। साथ ही लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2, कितने सारे रेडियो आप सबके लिए हम लेके आए। देखिए आपके मनोरंजन का कितना ख्याल यहाँ पे रखा जाता है। ओके, तो आज का दिन 8th of May बहुत सारी चीज़ें मनाई जाती हैं। आज का दिन डेडिकेटेड है बहुत सारी दूसरी चीज़ों के लिए भी, जैसे कि वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे, फ्री ट्रेड डे, वर्ल्ड डोंकी डे, नेशनल हैव अ कोक डे, नेशनल मिलिट्री स्पाउस अप्रिसिएशन डे, वर्क सेविंग वीक, नेशनल पब्लिक गार्डन डे, चाइल्ड केयर प्रोवाइडर डे एंड सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा नो सॉक्स डे। एक तो नो सॉक्स डे, उसमें से उसके बाद फिर वर्ल्ड डोंकी डे एंड देन नेशनल हैव अ कोक डे। तो नो सॉक्स डे, सॉक्स एक्चुअली हम सभी रोज अपनी लाइफ में, रोजमर्रा की लाइफ में हम सॉक्स के बिना तो बाहर निकलते नहीं, क्योंकि हम सब पहनते हैं शूज, क्योंकि पैदल ज़्यादा घूमते हैं हम यहाँ पे यूके में, है ना। अभी बैक इन अपनी एशियन कंट्रीज होती कि उठाई टू व्हीलर और घूम लिए, गली के एंड तक भी जाना है, तो नहीं नहीं हम लोग बहुत ज़्यादा वॉकिंग करते हैं। एंड वी लव टू वेयर सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल पेयर ऑफ सॉक्स एंड इट्स एन अमेजिंग इन्वेंशन टू प्रोटेक्ट आवर फीट फ्रॉम सन एंड कीप देम कोजी द होल डे। ठीक है, ठंड में भी इतना इस सॉक्स को हम पहन के रखते हैं कि वो कोजी रखता है हमारे फीट को। तो आज नो सॉक्स डे कैसे मनाया जाता है भाई? यू सिंपली हेड आउट इन टू द वर्ल्ड विथ योर फीट अनबाउंड, अनफेटर्ड, अनइम्प्रिजेंड, अनइम्प्रिजेंड, आई लाइक दिस वर्ड इम्प्रिजेंड, मतलब हमारे पैरों को हम प्रिजन है ना, वो सॉक्स तो बेसिकली है ना, वो पहना के रखते हैं। तो बस यही है कि बेयर फीट ज़रा अगर बैकयार्ड में लॉन है तो ज़रा घूम के आइए। और वैसे भी कहा जाता है ना कि ज़मीन पे कई बार नंगे पाँव भी चलना चाहिए, बिना सॉक्स शूज़ के भी चलना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए वो बहुत ज़रूरी है। हेल्थ के बारे में भी बातें करेंगे जो हम कर ही रहे हैं। कुछ देर में हम हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारे जो सैड वाले इमोशंस रहते हैं वो कितने घंटे रहते हैं पता है आपको, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ बस कुछ ही देर में।
1: ये है लाइका गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: For £1, you'll get 128.7 Indian rupee, 379.74 Pakistani rupee, 167.23 Bangladeshi taka, 87.13 Afghani, 438.44 Sri Lankan rupee, 1.36 US dollars, 176.01 Kenyan shilling.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £111.34 per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.

0: भाई मैंने कहा था आपसे कि हमारे जो सैड इमोशंस है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए ऐसा है कि कोई जो इमोशन है वो हमारे साथ रहता है, खुशी वाला भी रहता है, वैसे दुख वाला इमोशन भी हमारे साथ रहता है। पर क्या आप जानते हैं सैडनेस इट इज़ द लॉन्गेस्ट लास्टिंग इमोशन। टिपिकली इट टेक्स 120 आवर्स टू स्टॉप फीलिंग सैड। एक्चुअली जब कोई दुखी आत्मा होती है ना वो सच में बड़ी दुखी होती है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं दुखी नहीं होती, कभी कभी हो जाती हूँ मैं भी, आप सभी भी होते होंगे, लेकिन सोचो ना 120 घंटे लगते हैं हमें नॉर्मल आने के लिए वापस, बट जस्ट 30 मिनट्स टू गेट ओवर द फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट एंड शेम। हाँ ठीक है, हो गई गलती यार, चल छोड़ो जा रहे तो ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, आफ्टर 30 मिनट्स हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू डिस्गस्ट एंड शेम, हेट्रिड लास्ट फॉर 60 आवर्स फॉलोड बाय जॉय फॉर 35 आवर्स। अब ये रिसर्च किया गया, मुझे ना बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है इस काइंड की जो रिसर्च होती है ना, और इस रिसर्च का नाम था मोटिवेशन एंड इमोशन। क्या बात है, देखो कितनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपको पता चलती है ना। लास्ट ट्रैक आपको मैं सुना रही हूँ इस घंटे में, दैट इज़ बॉम्बे टू गोवा, एंड किशोर कुमार की आवाज़ में वॉल्यूम अप रख लीजिए क्योंकि थर्ड आवर में थोड़े हल्के फुल्के गानों की तरफ हम चलने वाले हैं। बहुत मस्ती भरे नहीं होंगे क्योंकि 2 घंटे आपको बहुत डांस करवा लिया, मैं खुद भी यहाँ पे बहुत मेरी कैलोरीज बर्न हो गई, और जो खाना वाना खा के आई थी ना, इट्स ऑल डन डाइजेस्टेड, पता चल रहा है घर पे जाके और खाना खाना पड़ेगा। दिस इज द लास्ट सॉन्ग ऑफ दिस आवर।
1: This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show. Like gold.
2: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
3: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
2: Call today on 01923 883 100.
3: Or go to skylordcruiseandholidays.com.
2: Book with confidence.
3: We're atoll protected.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner like our रेडियो।
6: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जेमिन फूड्स।
7: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्टी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट।
6: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जेमिन फूड्स।
8: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
9: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
10: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
11: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of 4 amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for 2 to Barcelona, a Michelin star dinner for 2 people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
12: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
13: द इवनिंग शो विद अश्विनी।
14: Another huge giveaway is coming. Like a radio network.

0: भी ला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 9:13, थर्ड आवर में आपकी हमारी एंट्री, गजल या कवाली आज क्या सुनाऊंगी बताइए जरा फटाफट, क्या लगता है। इट्स अ फ्राइडे इवनिंग, फैंटास्टिक फ्राइडे आप सबको सुना दिया, और इस आवर में जब आ गए हैं तो धीरे धीरे जो है हमारी मंडली के लोग जो हैं अब गायब होना शुरू हो रहे हैं, तो आप कंप्लीटली गायब हो जाएं रेडियो से। उसके पहले बता दूं कल सुबह मैं 10 बजे आने वाली हूं, आई विल बी सिटिंग इन फॉर रितुज शो, तो ज़रूर मेरा साथ दीजिएगा सुबह 10 बजे से। 3 घंटे मस्ती मजा गपशप इंटरेक्शन होगा, और सैटरडे है तो वीकेंड की धूम तो अलग ही रहती है ना। तो फ्राइडे जैसे जैसे आ जाता है तो हम लोग भी काफ़ी रिलैक्स्ड जोन में आ जाते हैं, और फिर धीरे धीरे प्लानिंग करते हैं कि नेक्स्ट हम लोग कमिंग वीक में क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। चलो यार एक दिन तो हम लोग रेस्ट कर लेंगे और एक दिन जो है काम काज करेंगे। मेरे लिए हमेशा ये होता था कि भाई सैटरडे घूमना फिरना कर लो और संडे जो है घर के तामझाम जो है घर के कामकाज निपटाओ एंड गेट रेडी फॉर द अपकमिंग वीक। सो आई एम श्योर हर किसी का अपना अपना एक दिन होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू संडे। लोग ना बड़े डरते हैं संडे से, अच्छा लगता है संडे, लेकिन दोपहर 2:30-3 बजे से जो है ना दे स्टार्ट गोइंग इन टू दैट जोन, कल मंडे है। पता नहीं मेरा एक ऐसा विचार है कि भले आप सैटरडे घर पे रुक जाओ, सैटरडे मंडे की पूरी तैयारी कर लो, और संडे जो है ना पूरा दिन शाम भी बाहर बिता के आ जाओ, ताकि जो वो मंडे ब्लूज़ संडे शाम से शुरू हो जाते हैं वो होना बंद हो जाएंगे। ट्राई करके देखो इफ़ इट वर्क्स फॉर यू, क्योंकि मेंटली जो है लोग परेशान हो जाते हैं कि यार मंडे आने वाला है। एनीवे कल तो सैटरडे, और कल की बात कल करेंगे, लेकिन अभी जो है ना बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक मनहर उदास की आवाज़ में, आप तो ऐसे ना थे तू इस तरह से।
1: Ashwini, brightening up your weeknights.

0: Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 32 मिनट्स पास्ट 9। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। तीन अमेजिंग फीचर्स, यादों की बारात इन फर्स्ट आवर, इमोशन ऑफ द डे इन सेकेंड आवर एंड थर्ड आवर में गज़ल या कवाली। तो आप सबके लिए लेके आई हूँ आज गज़ल। आप पैटर्न समझ चुके हैं कि अल्टरनेट डेज हम आपको एक दिन गज़ल एक दिन कवाली सुनाते हैं। गज़ल से रिलेटेड मेरा कन्फेशन क्या है भाई, मुझे ना एक्चुअली मैंने रेडियो सुना था, मेरी आई जो है बहुत रेडियो सुनती थी एंड हमेशा उन्होंने मोस्टली आशा भोसले, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी के गीत वही वो कैसेट्स लगा के सुनती थी। तो मेरा एक्सपोजर संगीत के लिए उतना ही था। बिकॉज आई एम इनटू प्रोफेशनल एंकरिंग एज वेल, आई वर्क एज एन एमसी एज वेल, तो मैंने शो लिया जिसमें मुझे एंकरिंग करना था फॉर गज़ल्स एंड दैट टाइम आई गॉट एक्सपोजर टू टाइप्स ऑफ गज़ल्स में भी कितने सिंगर्स हैं, कैसी गज़ल्स होती हैं और गज़ल्स का मीनिंग क्या है। उस टाइम पे एक महीना मैं पूरा गज़ल सुनती रही और जगजीत सिंह की बहुत सारी गज़ल्स मुझे बहुत अच्छी लगी, वहीं से एक गज़ल सुना रही हूँ अभी आपको।
0: गज़ल

0: पजल
1: ये है Leica Gold 10:35 AM
0: Leica Radio finalist at the Radio Academy Arias 2026. This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show. Leica
2: Gold TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com
3: TravelHub बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड
3: विजिट TravelHubWorld.com
0: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
4: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
0: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
4: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
0: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
6: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स Your travel mantra.
4: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help 2 children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
7: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
0: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
4: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
0: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
4: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
0: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
9: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Italy to Paris, Japan to USA. Star Tours takes you where you want to go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
10: For £1, you'll get 128.73 Indian rupee, 379.9 Pakistani rupee, 167.27 Bangladeshi taka, 87.17 Afghan Afghani, 438.7 Sri Lankan rupee, 1.36 US dollars, and 176.1 Kenyan shilling.
11: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan, or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
10: Gold is currently trading at £111.34 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
10: Like a gold. भाई बस अब टिक टिक करते हुए घड़ी मुझे कह रही है एक बार टाइम चेक हो जाए अश्विनी, इट्स 44 मिनट्स पास्ट 9। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम है द इवनिंग शो विद अश्विनी। मंडे से फ्राइडे रहता है आपका और मेरा साथ शाम 7 से 10 बजे तक, लेकिन इस बार मैं मिल रही हूँ आपको वीकेंड यानी कल सुबह 10 बजे। आई विल बी सिटिंग इन एंड कवरिंग रितुज शो। तो सुबह 10 बजे फटाफट नाश्ता वाश्ता करके तैयार रह जाइएगा क्योंकि हमें फिर से कल सुबह बहुत सारी मस्ती मज़ा इंटरेक्शन करना है। और आप सबका जो प्यार मिलता है, दुलार मिलता है, लाड़ मिलता है, खाने पीने के सामान के जो पिक्चर्स आप लोग मुझे भेजते रहते हैं, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव ऑल ऑफ यू। और देखो ना, अब तक आप सब लोग साथ दे रहे हैं और आप लोगों के मैसेजेस बैक टू बैक आ रहे हैं। सच में यार एक ब्लेसिंग होती है ये जो हॉट सीट जहाँ पे हम सारे प्रेजेंटर्स आके बैठते हैं। दुनिया चाह के किसी भी कोने में आप लोग हैं, देखो ना आप लोग कितना प्यार देते हैं और कितना साथ देते हैं। हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी कि जीवन हमारा जीवन बहुत बहुत सुंदर है, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। ना जाने क्यों हम उसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड ना करें अपनी लाइफ। प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है। बिल्कुल कल सुबह उठते से फिर से खुद को आई लव यू बोलो पहले आईने में। दूसरों को बोलते हो कभी, खुद को बोलते हो कि नहीं, है ना? एंड पावर ज़रूरी होता है किसी को बर्बाद करने के लिए, लेकिन आई एम श्योर आप लोग प्यार देने वाले और लेने वाले लोग हैं। इसी तर्ज पे यही कहना चाहूँगी, कल सुबह मिलेंगे 10 बजे, तब तक अपने आपका ख्याल रखिए एंड गुड नाइट, फैंटास्टिक ड्रीम्स एंड कीप टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
8: ये है लाइका गोल्ड।
12: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: Leica Radio Network across London, Manchester, and the Midlands. The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
1: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
0: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
1: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
0: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: 105 सुपर हिट शोज़ पची हवे लंडन मा आवी रही छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लाइने आवी रहया छे सखना रेजो हस्बैंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखना रेजो हस्बैंड जी
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
5: साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 02085748410
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02023963575 Greens by Daniel Prime Location
6: High Appreciation
7: in Dubai।
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
9: भक्ति, प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
10: मत जाओ काना, क्यों जा रहे हो?
11: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
9: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
11: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
9: कृष्णा अवतारम इन सिनेमाज नियर यू।
11: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
12: क्लासिक नगमे आपके अपने लायका गोल्ड पर।

0: Laika Gold.
1: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
2: No more worries for me.
3: Southall Travel, Auto Protected.
4: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रही छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडेज 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखना रे जो हस्बैंड जी
5: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Laika रेडियो
6: भक्ति प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी
7: मत जाओ काना क्यों जा रहे हो
8: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं
6: देखिए कृष्णा राधा रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला
8: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा
6: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू
8: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी
9: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
10: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
9: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
10: And you didn't pay those massive roaming charges?
9: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
11: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
12: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर

साहेब, ओ साहेब, पंछी पिंजरे से छूट गए, सब अपने वादे टूट गए। लो साहेब हमसे रू

0: inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, greens start from just £711,000.
0: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
1: High Appreciation
0: in Dubai.
2: भक्ति प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
3: मत जाओ कान्हा, क्यों जा रहे हो?
4: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
2: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
4: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
2: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू।
4: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
5: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
6: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

0: Laika Gold. The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
1: Atif Aslam live in the UK.
0: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
1: Book your tickets now at AXS.
0: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
1: Exclusive radio partner, Laika Radio.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड।
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
3: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
5: Relax, I've booked the Uber already.
4: But how? My roaming isn't even working yet.
5: I switched to Simsy before we left London.
4: Simsy? Since when are you the tech expert?
5: Since I decided I want a stress-free holiday.
6: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
7: T's and C's apply.
1: Laika Gold पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।